0: रेडियो एनआरएन 99.1 खरो विषयमा तरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक
1: दिस होम इन्टरनेट।

0: Christmas banking. Radio NRN 99.1.
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फुलबारी।

रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौ। 7 बज्यो। नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो साँझ पख।

0: सुन्नुहुन्छ रेडियो एनआरएन 99.1 सबैका लागि सूचना।
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो चौतारी।